पाकिस्तान के नामवर गुलूकार मसूद राणा की बरसी 4 अक्टूबर को मनाई गई। मसूद राणा 6 अगस्त 1941 को पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक मीरपुर खास से था और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गायकी का आगाज किया था। उनकी शोहरत का आगाज फिल्म शरारत के नगमे ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है से हुआ। इस फिल्म के मौसीकार दीबू भट्टाचार्य थे जबकि फिल्म साज इकबाल शहजाद और हिदायतकार रफीक रिजवी थे। ये फिल्म जुलाई 1963 में रिलीज हुई थी। इससे अगले बरस ही बाबा जी ए चिश्ती ने अपनी फिल्म डाची में मसूद राणा से मशहूर नगमा तांगे वाला खैर मंगदा गवाया। इस नगमे से मसूद राणा की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। इसके बाद हमराही, आग का दरिया, दिल मेरा धड़कन तेरी, दामन और चिंगारी, भरिया मेला, रिश्ता है प्यार का, एहसास, दिला दे सौदे, आंसू, भरजाई, अजदा महिवाल, इश्क नचावे गली गली, तकदीर, मुजाहिद, चराग कहाँ रोशनी कहाँ, दिल लगी, बहारों फूल बरसाओ, बंजारन और ऐसी ही लातादाद फिल्मों में उन्होंने अपनी गायकी का जादू जगाया और मुतअद्दिद एजाजात हासिल किए। मसूद राणा ने 2 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। इन फिल्मों के नाम थे शाही फकीर और 2 मुठियारा। मसूद राणा ने कई मिली नगमात भी गाए जिनमें मियाँ बशीर अहमद का लिखा हुआ नगमा, मिल्लत का पासमा है मोहम्मद अली जिना सरे फहरिस्त है। मसूद राणा का इंतकाल 4 अक्टूबर 1995 को हुआ। वो लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन के

तर्ज पर काम करने से हरीफ आपके अमल को आपसे पहले ही पढ़ लेंगे और आपकी चाल का तोड़ कर चुके होंगे। एक ही सीध में उड़ने वाला परिंदा बआसानी शिकार हो जाता है, मगर जो परिंदा अपनी समत तवातुर से बदलता रहे आसानी से शिकारी के हाथ नहीं लगता। जहन में जो मंसूबा हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और देखिए कि इस मौके पर क्या अमल मुनासिब हो सकता है। एन मुमकिन है किसी मरहले पर कुछ न करना ही उस लम्हे का बेहतरीन अमल हो।